0: हैदराबादी पोयम।
1: जानी जानी क्या रे अब्बा, शक्कर खा रहा रे जलील, नहीं रे अब्बा, झूठ बोल रहा रे माकेलोड़े, नहीं रे अब्बा, मुंह खोल रे मैया के लोड़े।
2: The Arabian humpback whale is unique in all the ocean.
3: They do not migrate.
2: They are a remnant population belonging to a lost tribe.
4: They have language. All. Their own. Listen.